जिन उपाय कहे संभाले समरहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी तहा सौ करता चिंता करे जिन उपाय जग तिस जुहारी स्वस्थ स

परत अनुरूप कन सुत कन पै लायत बारी खाए नानकन सा आदमी बदे जम पुर जाए सब सुत परम।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख। समें दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन, इस दे मन विच बड़ा दुख सी कि गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहा जंग करन लई, ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है, उस नूं भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो, तृतीये मता किश करो उपाया, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो, कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा कोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख। सुलही का हाथ

पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा ली गुरु पंचम।

महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी। गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नूं प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, न्योटियां दी ओट, न्यासरियां दे आसरे, उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भाई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उना नू रोज इशनान करवाया, ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेकां फल प्राप्त कीते। साडे देश दे विच गंगा नू पवित्र मनिया जांदा है। सनातन तो सनातन गंगा दी पूजा कीती जांदी है, ते गुरु अमरदास जी अजे गुरु नहीं सन बने, बाबा अमरदास जी सन 72 साल दी उम्र तक अपने जीवन विच हर साल मंडली दे नाल हरिद्वार जाया करदे सन, ते हरिद्वार जा करके पाठ पूजा करनी, संतां दा संग करना, ते फिर बई गंगा दा इशनान करना, ते गंगा दे इशनान करन दा फल प्राप्त करना। एक दिन ऐसा आया, इशनान कीता, जिथे आसन लगाया सी उथे नाल ही पंडित जी दा आसन सी। पंडित जी बड़े विद्वान, पंडित जी ने देखिया बाबा अमरदास जी दे पैरां दे विच पदम है। ए पदम भगवान कृष्ण महाराज दे पैर दे विच सी, ते पंडित जी ने कहा बाबा जी आप दे पैर दे विच ते पदम है, ते ए पदम आम मनुख दे पैर विच नहीं हुंदा। जिदे पैर विच होवे ओ यां ते राजियां दा राजा बनदा है, सुल्तान बनदा है, या फिर संतां दा महान संत बनदा है, जेड़ा सारियां नूं परमात्मा नाल जोड़दा है। सुन के हैरान होए, लगन बड़ी सी परमात्मा दे चरना कमलां दा ध्यान तरन दे। समा होया खान दा, ते पंडित जी ने पूछ लिया बाबा जी आप दे गुरु कौन हन। गुरु तारन नहीं सी कीता, ते जदों इनकार कीता कि मेरा अजे गुरु कोई नहीं, ते पंडित जी ने कहा मैं अपना जन्म प्रिष्ट नहीं करना, मैं आप दे नाल प्रशादा नहीं छक सकता। आपने गुरु धारण नहीं कीता, कहंदे हन निगुरे दा नाओ बुरा। कलेजे दे विच तीर लगा, उदास चित अपने घर वल नू पुजे, रात सारी नींद नहीं आई, ते अमृत वेला होया कि सुनदे हन के नाल दे करों भरा दे करों उना दी नूं राणी जपजी साहिब दा पाठ कर रही है। ज्यों ज्यों पाठ

मन टिका विच आ गया। नू राणी कोलों पुछया जा करके, बच्ची ए जो पाठ कर रही है ए किसदा उचारण कीता होया है? अगों जवाब मिलिया, पिता जी ए ते बाबा नानक जो कल युग दे अवतार आए संसार ते उना दी पवित्र बाणी है। उना ने कहा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। मानो ज्ञान हुंदा गया। बच्ची दे प्रवचन सुने बाबा अमरदास जी चैन नाल कर नहीं बैठे। उसे वेले जा गुरु अंगद सच्चे पातशाह दे चरना ते मत्था टेकिया। अगों

लगे, गुरु महाराज मैं आज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानता हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो, पर मैं ते आज दास बन के आया। आज ते मैं अपनी चोली खैर पवान आया हां, मेरे ते कृपा करो, मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालक हो, घर दे मालक हो, आए हो ते गुरु नानक दे घर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देखदे देखदे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे, लकड़ा टोंदे, लंगर दे विच प्रशादे पकांदे, संगतां नूं छकांदे, ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे, ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह एक गागर लैके ब्यास वल चल पैंदे। बाबा अमरदास जी एक दिन जदों ब्यास तो गागर चुक के पुठे पैरी आ रहे सन, ते जुलाही दे ताने पेटे नाल पैर दा अंगूठा लग गया, डिग पे। आवाज आई अंदरों जुलाही ने किया के कौन हो सकता है, जुलाही ने भी किया कौन हो सकता है, ते जुलाही ने फिर कह दिता, होवेगा ओहो ही अमरू ने थावा। कहन दी देर सी इधरों अंतरयामी पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज नू अंतर ध्यान होए सन, जेड़े पता चल गया कि अज मेरा सेवक जिसनू ने थावा किया है, इतनी सेवा करन वाला, करड़ी सेवा करन वाला जिसनू ने थावा किया है, उसनू ते निथावियां दे थाम होना चाहिदा है। बस भगती परवान होई, सेवा परवान होई, ते ज्यों ही आ करके बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी नू इशनान कराया, ते इशनान करके बिठाया तखत ते, ते वर देने शुरू कर दिते। भई बाबा अमरदास जी तुसी ते निमाणियां दे मान हो, निताणियां दे तान हो, न्योटियां दी ओट, निगत्तियां दी गत, पत्तियां दी पत। पाईसा पाई गुरुदास जी ने इस सेवा नू जदों परवान होया देखिया, ते फिर बई कवित दे विच कलम बद्ध कीता, इस कारण करके कि आन वाले संसार दे सेवकां नू पता चल जावे कि एक गुरसिख नू इशनान करन दा कितना क फल मिल सकदा है। मगर ओ गुरसिख होवे गुरु अंगद

करके अनाज लियांदा, लिया करके आप पकाया ते पका करके सारे साधुआं नू भोजन छकाया, पानी पिलाया ते उन्हां नू तृप्त कीता।